चढ़ ज्योतिपाल दसम से तिस्सा सिटे दसम से असु हत दक्वा जीवत तुनत श्रीलंका सिनेमा गीते अमरणीय राजू लेस सलकने जान हुर्दे अमरणीय गायक ओगे मुर्दु सुवंद देन सत्वा बावे फिरुनु हंडे श्रीलंका संगीते असम सम सटानक तबुआ सिनेमा गीत तुंदागर अधिक प्रमाण गायना कल ओहु ओब माहट दुन सेनेस सांदकी निसंदकी मगे रानमेन के ओबट मगे आदरवेन गीत अदत जनप्रिय ओगे हंडट तिबु सुवंद संवेदी सत्य मनुष्य के में पिरनु जनता ओगे सिद्धि नागता रूपवाहिनी सिनेमा वेदिका संगीत सेलुम शेस्त्र वल सुविशेषी सटहनक ओतबाति बिनो ज्योतिपाल के गीत असन विट अदट सितट सोयक मतक सुवंदक सह अमरणीय संगीत रसयक लभिनवा

टोनी हसन श्रीलंका संगीत सा हिंदी जनप्रिय संगीत विशेष स्थानीय जनाद्रेट आदरणीय गायक ओगे सतुटुमत नर्तनमय वेदिका सजीवीकरण गायन शैल्य निशा ओगे बाइला सा अनिकुत गीत लोके प्रसिद्ध नाम बहुत पत्तुना इदास नम से हत्यावत असु दशक बाइला संगीत नव शब्द सा सजीवीकरण गिना कलाकार ओगे गीत वोट तिबु सरलत्व सतुट सा जनता और समग सृजु संबंध निशा ओगे गायन विशेषात्व गता उत्सव विवाह सा सतुट अवस्था वाले ओगे गीत अदत अनिवार्य वादने वेनो सिंगल संगीत जनप्रिय कल फाइनियंस अतरट ओगे गी नमद अतुलत वेनो टोनी हसन गे संगीत अदत जीवमान सतुट नर्तने सा श्रीलंकीय राशे मतक करना अमरणीय हंडा

सुनील शांत दस नंबर से पहले पता लगा दस नंबर से आसुग के साधारण वेन्यू के श्रीलंका संगीते पुरोगामी अतिशय गाउरोवेट पात्रों संगीत अन्य कुछ सह गायक और श्रीलंका संगीते जे स्वदेशीय राशे नव सुरवीम सह निर्माण सीलत्व गिना आए सिंगल संगीते जे स्वदेशीय हंडक नव मम्पेतक सह सत्य राशे गिना प्रमुख कलाकार ओगे गीत सरल गैंबुरु संवेदिसा श्रीलंकीय संगीते हदवतट लंगावन रसज्ञनेनवा संगीत अध्यापने गीत निर्माणे सा सुरवीम तुल ओगे दायकत्व श्रीलंका संगीते इतिहासे विशाल सटाहनक कला सुनील शांतगे गीत अदत असन विट श्रीलंकीय संगीते सत्य रसे निर्माणशीलत्वे सा सौंदर्य तावमत जीवमानाय

एंटन रोड्रिगो श्रीलंका बायला सा जनप्रिय संगीत विशेष स्थान गत जन हृदय आदरणीय गायक ओगे सतटुमत नर्दनमय वेदिका व सजीवीकरण गायन शैली निशा ओ बायला लोके अमरणीय नामक बहुत पत्तुना हत्या व असुव दशके बायला संगीत नवरसज्ञना जनप्रिय गायक मेनिके मालिकावे सीनिमल्ली मलमेनिके वेनी जनप्रिय बायला गीत ओगे नामे समग संबंध उना ओगे गायन शैली सरल सतुटु सा जनताव समग सुदु संबंधक एतिकल विलासितावकिन पिरी तिबुना उत्सव विवाह अवस्थावलदी पवा ओगे गीत अनिवार्य वादने उना एंडन रोड्रिगो संगीते अदत जीवमान सतुट नर्तने सा श्रीलंकीय बायला रसे मतक्रोण अमरणीय हंडाक

प्रिया सूर्यसेन श्रीलंका जनप्रिय संगीत अतिशय प्रियतम गायक दशक गणनावक जन हृदय लंगा कलाकार ओगे मृदु सुदिन संवेदी हंडत सरल गीत रसयत निशा ओगे गीत अदत जनप्रिय आयमी नोवी जीव मानव पवतिनो हत्या वसु दशके प्रेम गीत संवेदी गीत सा जनप्रिय गीतों से विशाल जनप्रियत्व लबागत हो गायन शैली सरल नियतमानी सा हदवत सुजम लंगावेन विलासिताव किंग प्रीतिपूर्ण निशा सिनेमा गीत रूपवाणी गीत सा वेदिका संगीत ओसे ओह श्रीलंका संगीत अमरणीय सटाणक तबुआ प्रिया सूर्यसेन के गीत असन विट अदत सितट सोयक सिनेहासक सा अमरणीय मतक सोंदक लबिनुआ